डॉक्टर, मैले उसको विल पावर जगाउनु धेरै ट्राई गरिसकेँ, म हार खाइसकेँ। आई एम सो सरी डॉक्टर।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज
1: ओएसआर डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन
0: lensnepal.com इन फोकस यू एंड एवरीथिंग

98 34 85 516। कृषक खेतका लागि जारी सन्देश। गण्डकी प्रदेश सरकार, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, गोर्खा।